हमन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी, राम नाम है जग में।

उठा साटका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी।

अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

भेज सड़ देने भजन करे ते भेज सड़ देने लंका राज दिलाए।

भजन करो हरि जगत जगतार, भजन करो हरि जगत जगतार, भजन

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबकी दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली सिम।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुंह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। ओ जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चमकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी। मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
6: ये लीजिए महाराज।
2: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा

0: अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ, शाही रसोइये।
1: जी महाराज।
0: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
1: जी महाराज।
0: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
2: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
3: महाराज ने चम्मच को उठाया,
0: पूरे दरबार में सन्नाटा छाया। भाई वाह,
4: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
0: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
3: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया। लो जी,

मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो

0: साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। ये बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, मिर्च। बड़ा मजा आ रहा है। भेलपूरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपूरी। अब आएगा मजा। हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
0: देखा कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
3: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
3: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
3: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम?
3: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊं?
2: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
3: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
2: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब?
3: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
2: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
0: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला, केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी

0: मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
1: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियां क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
2: अब्दुल रहमान।
1: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
2: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
1: और आपके गाँव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियाँ होती है?
2: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
1: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
3: मेरा नाम शांति है।
1: शांति, सुमित और उसकी भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
3: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
1: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
3: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
1: अरे, मेरे गुड़गांव के दोस्तों कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है?
4: हमारा नाम है लक्ष्मीबाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
4: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसे का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देती है।
1: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्तों सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
5: पालक।
1: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
5: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियां कैसे खिलाती है?
6: मैं वैष्णवी को पालक कहानियां सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियां खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
4: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालू 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। पर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके, बाय
7: बाय। मजा आया ना?

0: दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। भाई वाह क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं, भाई हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है जैसे, तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते।
1: हाँ जी, तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं

0: ऐसा उपाय है जिससे तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं।
1: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर में मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज़्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पनीर पनीर से पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
0: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं? मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
1: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते हैं, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
0: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है, कि हरी सब्जियां ना खाएं तो, कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले,
0: जी
1: पौष्टिक आहार मिले, और इसके अलावा कि तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

सेना से आई घर की हुलिया बदल गई, लड़का और बिटियन का ऐसी अकल।

गई सरपंचन। गुरुआ की गली गली में बरसा दो कंचन, गुरुआ की गली गली में बरसा दो कंचन।

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी, जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से, जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने हैं गो और उतर के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा दे। एक कथा है ना कि अपन सुन के भी सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए, और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो के बारे में तो है कि नहीं। सो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चले थेंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है, लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। कह के पहुंचे में इतना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर कर भी चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

को पानी सुधा समान पर्वत जंगल आलीशान सुबह सुबह और मिलके न धसान जिनको

सब तुलसी भये महान। तो संत कभी दुनियन की खान, तान से नहीं गूंजे तान, ये सब तो

आई जोड़ी खेलत रहे रघुराई। प्रेम भाव के भूखे भगवान प्रेम भाव के भूखे भगवान वीरन तज पाठन अपनों प्यार हो बुंदे लेखन। प्रेम भाव के भूखे भगवान वीरन तज पाठन अपनों प्यार हो बुंदे लेखन। भारत माता को हृदय दोहे पे हमें गमन अपनों

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोक गीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओ, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम, जो पुजारी हैं उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
2: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से हैं, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी वहाँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुमदेव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है। वाणी से प्रमाणित नहीं होगा, यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का

0: कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तू से मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा की पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने पर मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन में 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
1: अच्छा,
0: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है।
1: बिल्कुल,
0: और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है, जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 22 से 51 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं, जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघनासे हु तबहि। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 22 से 51 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति है वो सब दक्षिणावर्ती हैं, और यहाँ भक्त और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा, और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं, और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रख रखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासन के या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया, और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए। आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों, यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं।

0: आपका शुभ नाम क्या है दादा जी?
1: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर्ड शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, एक साल जावरा रहे।
0: तो आपन यहीं के हो?
1: यहीं के।
0: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करते यहाँ जन्म लेख है ऐसी अच्छी तपोस्थली में? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
1: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं। देवी जी के उनकी कृपा से हमारा सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का आशीर्वाद दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से घटता है।
0: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
1: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
0: रामचंद्र जी का मंदिर है?
1: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। और वो जो है किराए पे मतलब ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियां उसमें रामचंद्र जी हम देखे हैं। और बहुत बड़ा है मंदिर।
0: अच्छा,
1: उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जगह है।
0: अच्छा है,
1: बहुत बढ़िया है।
0: तो साथियों, अभी हमने चंदेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सुनते हैं एक और लोक गीत धन कुंवर की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गाँव की कोई विशेषता है, आपके गाँव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-1417-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9425-1417-26। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुनते हैं कहानी को, लेते हैं कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कोते राजन के कुमार
2: आओ
1: और एक हती बानिया के लड़का।
2: अच्छा मतलब एक हती राजा के कुमार,
1: एक हती बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ।
1: अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती।
2: हाँ।
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम का, तो के पढ़ लिख के जो भी याद है सुबन को चले जावे।
2: दो ही के दो,
1: दो ही के दो शिकार भी अपने घोरो मस्के, भी अपने घोरो मस्के।
2: हाँ।
1: अब जब वन में पहुंच गए।
2: हाँ।
1: तो जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बरती तुमने फिर कर।
2: अच्छा,
1: तो कल के दिन में भी बोले कल बीरन बोले। अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल थे। अब राजन को बस बीरन थे अपने बानिया कितना शकत बीरन।
2: अच्छा,
1: भी है बादशाह बीरन और बादशाह दोनों जने। कह के राजा
2: हुई
1: बस बीरन ने बार मार बनवाए, दाढ़ी फाड़ी बनवाई, बार छटवाई।

0: भैया का खिलानी छत कर ले ससुराल हो जा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: अब जब नाव घेगो से नाव को रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्या था
1: जा सही के
0: नाव को सब पतो है।
1: हाओ
0: तो नाव को तो राजन की कुमारी की ससुराल को पतो
1: ऐसा।
0: सो बस अब बीरन के बार बन गए।
1: हाओ
0: अब राजन के बादशाह के बनने।
1: हाओ
0: तो बादशाह के बार बने।
1: हां
0: तो बादशाह बोले बोले कर ले काय सताया का बोले कर ले कि राजन के राजा।
1: हां
0: बोले कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है।
1: हाओ
0: हमारे हम कैसे चली जावे। अरे बोले कर ले राजन के राजा आप कैसे ससुराल तो पृथ्वी पे काऊ की है नहीं है।
1: अच्छा
0: हां हां तो बस बोले कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए।
1: अच्छा
0: के नाव होगा।
1: हाओ
0: बादशाह होगा बीजन हो गए।
1: हाओ
0: अब तीन जने की दोस्ती हो गई।
1: हां
0: बस अब चली ससुराल के जा।
1: हां
0: तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी।
1: हां
0: सुबह में बीजक लगवाओ तो के जब बीजन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
1: अच्छा
0: गली में संपत्ति उन्हें लगी प्यास। तो राजन ने हुक्म ढीलो तो चलो वीरन पिया पानी। तो वीरन गौ पानी पीवे के लाने तो पानी बीजक बाँचो।
1: अच्छा
0: बीजक बाँचो वामे सो में गली अलग अलग। वीरन हो बदमाश। वीरन बदमाश हो।
1: अच्छा
0: तो वीरन ने कहा करो किस्सा के पानी पी के बावरी में वो बीजक को भरा दो
1: ले उसका।
0: अगर हमारे अगर जो बीजक को जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जो बातें ले से संग छूट को इसे के हमारे जी ससारे चलेंगे
1: चलेंगे
0: तीनों जने
1: तीनों जने।
0: हाँ जा तो बीजन बदमाशी के रहो। हाँ तो बस अब राजा पानी पी गए। हाँ तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में हेरी।
1: हाँ
0: सुबह में बीजक में गिराव लगो रहे। तो राजन ने अपने खोवन की उली चुली चुकी माए
1: धो दाओ
0: और फिर उगे बाँचो। बाँचो बाए सुबह ने उन्हें प्रधान पूरो लिखो कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई वो जा वीरन के कुमार को रास्ता गई। दोनों जने तो बोले कर ले तुम वीरन बोले कर ये राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है। बोले कर ले पुरखन को बीजक के ने मिटा दिया है हट कर ले कि हम अपनी ससुराल देते हैं। बोले कल उनकी शर्तें लग गई।
1: अच्छा
0: बोले कल जो पहले आज विदा करा के वो जिस बाउरी पे ठहरे क्या जन किसी को भी जाए।
1: सही सही
0: तो बस बेटी तो भी अपनी ससुराल चली गए। और भी अपनी ससुराल कर ले वो जी ससुराल का। हाँ नाव।
1: हाँ
0: बोले कल जी राजन के संगे चले।
1: सही है
0: अरे हमारे वर के संगे का चले हम सेठ आदमी।
1: हाँ
0: और राजन के संगे जी वो हेल्पर चलते हैं। तो राजन की कुमार और सताई का कद्दू जने जा रहे वीरन अपनी ससुराल चले गए। अब सब राजन के कुमार जा रहे से बन कजली में पहुंचे। तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास।
1: अच्छा
0: बोले कर ले सताई का बोले कर ले ये राजन के राजा कर ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकले जा रहा
1: है।
0: इसे पानी को देखो। बोली कर राजन के राजा बारह कोस में ना है पानी ना माय पानी अपन वन में हेंगे। बोली कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना आपका। बोली कर ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पे चढ़ी सुबह पे देख के भी लम्बे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा था ऊंची जांगा हो भी चढ़ी तो ये उत्तर दिशा में बगली मर रहा है। तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा।
1: बिल्कुल
0: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर्रा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है पानी जल्दी हो गया। बोले कल चल तो ले जा सुबह लोटा घड़ी ले अपनी अरे खुली जाए सुबह जन्म दे पाई खुली से जीत गए कि आराम से आराम से बिन नगद चले गए। काकस्ता हाथों के जोनवर लड़की राजन को ब्याई थी वो नदिया में स्नान कर रही थी।
1: अच्छा

0: नदिया में स्नान कर रहे थे। सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के मचो सचो भर के पहुंच गए। बोले कल सुताई अक्का, बोले कल ये राजन के राजा, बोले कल उस तालाब में पानी ये सो ठीक है तुम ले आ, बोले कल वहां जाके ना अपने से पानी पी लो। बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले, बात है क्या, क्यों पानी जो मचो लिया ऐसा जल्दी होते को कि मचो सचो भर के आ। बोले कल महाराज कल ऊ तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही है, तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी, तुम तो सब मचो सचो भर लिया वो हम खुद की आसन मर जा रहे। अरे बोले कल बगरा गए तो वो पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल्ले सुधायक का बोले कल्ले के ये राजन के राजा, बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूर है जब मुंह बोले कैसे
1: सही है,
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को। बोले कल्ले कहो उन्हें कही

0: ने कही के
1: नहीं, राजन ने कही जावा,
2: राजन ने कही जावा,
1: राजन ने कही जावा। हां फिर कही उनने, अब्बा बोले जल में ठाड़ी जो।
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही,
1: जो नहा रही बा बोल रही है।

0: अयक्का बोले कर ले राजन के राजा, सुनो हमारी बात, अभी से बोल दो ना।
1: सही है,
0: अभी से बोल दो ना, बोलो कब का बना दे वाला
1: बताओ।
0: हैं सही कही, बोले कर ले नहीं, अबे तो हम इससे और बोल देंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे
1: हैं।
0: भूले

0: हैं गली बता दो, सो काउ के द्वारे लग
1: अब पहुंच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते हैं अगर बता दीजिए। अब जल के भीतर हुई, अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए। इनको बदल शरीर है कैसे, मुंह करे माइक हो और पीठ करे इंताइक हो, कही के अब जाइए से बताया। सुनने के बाद माँ से बोले

0: इलाहाबाद मिल जाओ।
1: अच्छा
0: माने मिली ना बताई ना माने बदन काड़ो जल नीर में रही।
1: अच्छा
0: अपने पास आ गई मैं सावन में किसी गली तो पूछ ही ली। गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ गाँव के लाने तैयार। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्दी सफरो और सफर खोल के और बाप ने गेल चली जो ने ये हती से जाते भवन द्वार छोटे लड़का को देखो तो ससरा सुबने द्वार उनने अब पहुंची घरे पहुंची घरे सुबह भी घरवाओं को बंद। अब भाभी से बोली भी

0: भाभी ने कहा ऊंचे कंदेला नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
1: ऐसे
0: और तुम्हारी आ गए चाला
1: अब लुबग्गा आ गए तुम्हारे
0: लुबग्गा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
1: ऐसा
0: भाभी से कही सुबह सुनने घरेला उतार दी अपनी नाश्ता बनाने के लाने तैयारी की तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला
1: अच्छा
0: बोले कल देखो अपन को कौवा गेल कुमार बनाए थी
1: बिल्कुल
0: अब भोजन नहीं करने अब भोजन नहीं करने इसकी भोजन बना के अज्ञा दे दी भोजन की लाना तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सुनने चाहे एक लो चाहे खाई हो चाहे दो खाई हो और वहां से बने थना नो जवाब ठोको
1: अच्छा
0: ठोकनी ठोकने ना तो भेद कैसे खोले बाबू
1: हां सही है

0: देखो रिश्तेदारी है और जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जाल है
2: तो बस ये रुकते
1: फिर नहीं गए
0: उनके ते रुक गए जो ने परोस की
1: हां परोस की ने कही जवाब
0: हां तो परोस ने सोची कि अगर हम भोजन कराओ तो केर बेर को संग है
1: सही है
0: बेर भर के जाओ
1: हां
0: तो उनने हटी सो जैसे कच्ची पुटिया पर मूत की वही रानास में ले गए
1: फिर कमाई खोर पुटे पाड़ जा ले गए
0: मैं कहूं वही जहां उनकी रानास थी फिर पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए तो अब उनने सोची रानी कि अगर भोजन भी है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा फारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पे नहीं थी भी सुबह बजे

बिछिया बजो, तो उनने बिछिया की आवाज के समतन मोर बोल गई बन गई और वसन दोहा दे रही।

भोर जी। अरे अबे नहीं खाओ, नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलना नहीं, बाने फिर दो जाके कहो।

कामनी। अरे खोलो का अरे किवार है जी उन खोलो कम से किवार निके उन नाव से कई कई किवार निकल गई। अब जो दो है सुनो साधु ने सुनो दो है साधु के रामन से संक बजे सा दू जा मेरे

0: शंख बजे से साधु जगे, बम घले राजपूत। अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कूद कब पूछे।
1: सही है के का हो
0: का हो
1: कते दुनिया भगत जावे रु बिछोना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो हो के रानी राजा के पास में भी गई। अब फिर की दोहा कह रही है

0: लड़की लड़का से लड़की भली रे सो मेरे पे ब्याह जी। अरे ऐसी सासु का काम की है तेरी कुखन बांझई हो जाती। ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मिलनी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो बोलती
0: ये तो गड़ गया है ना यार सुबह पटक थार और भी भाग गया। जब थार पटक के में भाग गया सुबह अपने बैठ गया। अब रात को समझ गया कहाँ जा रहा है जो सबीरम हो सोने घोरों मस्को उस चलिए। सो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुराओ और भोजन करो भोजन करके हम आपकी विदा कर रहे। ठीक है सुबह बिहती डट गए खाना खाओ खाना खा के और पीना सुनने सजाई तो उन्हें विदा उनकी कई वो में खाना पीना सब महीना भर के लाने रखता खा पिया घर चले गए। बस आओ अब पीना हकावे बारे हती तो जैसे गाँव के बारे करी तो उनमें मार जताई तू भी भक्त छोड़ के अब खुद उनने हकाया सुताई अब काले कबाजी ने हकाई सुबह हका के वो बस अब कहीं ऐसी और चली होंगी तो शाम हो गई से एक बमूरा को पूरा रहे से उतरे बस गए शाम हो गई से बस गए। बस के में अब बोले कर ले सुनो सुधा का बोले कर ले कल ही पापन को नहीं छोड़िया नहीं रुकता

0: बसन रही थी,
1: बसन
0: रही थी सुबाने दे के ठीक है।
1: सूरज सताई अक्का से कही के सताई अक्का खोदा दौरानी है
0: के पची लगाओ।
1: तो सताई के अक्का गए से तीन पात में लगा,
0: एक अपन को एक राजन को एक रानी को।
1: सूरज भैया तो कहले क्यों वे ये तीन पात में का कर लिया।
0: बोले कहले एक आप को एक हम को एक रानी को।
1: अरे बोले कहले रानी की फार के फिर दे मैं
0: सुरानी की फार के मैं।
1: अब बस पातस लग के आई तो खाना खाओ, खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के ही हैं, इसे का करें। से जिस सुबह घोड़े की पछाई की ईड़ रखी, ईड़ भजत बा बड़ूर बनी थी, सुबह छोड़ के बाने पीने से मार गई
0: बड़ूर
1: कि ये भगे तो जब ईड़ टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचू के ले। सुबह सुनने थी तो घोरो भंसाई रात भाई को बड़ा सुबह तनो वो तनी वडूर तनी दूर सो नेक चावा को ठोको घोरी में सुबह दूर पाए। सुनने कही थे रानी ने

चैनल दृष्टि हर में बुझा दई हमें, हम न जय गांव के रहे न बई गांव के रहे, अब ये सुनल बारे के मैं किसी चले गए, मैं अपने भवन को चले गए। अब रानी ने अति सुबह पीनस को वे घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाओ थी पीनस को हकाओ थी रानी तो हका जो वैद्य से कचुवती से राजा गिलंद की बाग में जा रही सुवन ने भज्जा घर वन ने नाय के चूपी माय की बोलन्या चूपी रानी तो मालिन हटी तो मालिन बोली बोली कर ले गया। कौन कहाँ की पापन आगे कहती है तुमने एक मोर रानी ने वो मालिन को राजन की बेटी तू तो कछु मोरन को कछु टूटो तो नहीं हटी भी तो रहे सूर्य से कच्ची बिलाद दिना हो गए दुकान दुकान। तो एक दिन अब उनकी बेटी हटी राजन की जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी जमती जमती नाव तो बेटी को सुबिन बे फूलन की तरह तो लगती बात सुबह मालन रोजीना डाली लगा दे और फूलन को ले जा राजन ने हकी सोची के मालिन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूमने आए तो बगीचा घूमन गए भी सोचे बाद राजन की लड़की रहे रहे तो राजन ने सोची कि ये तो काछी माछी की तो या है नहीं है तो कहो राजा की लड़की तो वो जैसे कैसे अपने घरे पहुंची घरे पहुंची सो घरे पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उन्होंने माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ डाली उन्हें लगाई अब बादशाह ने हटी सो राजन की पिया न्योता बाबे न्योता कम कम अबे न्योता पिया रखो सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हटी बादशाह तो अपने उन्हें थारी लगाई तो उन्हें परसु बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह का सुबिन ने सोची अगर बनती हमारी फलवा लिया उसी बन में ना छोड़ी आउती भाई ना करती हवा सोने हर सांस ली सो बीजन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है राजन की बात में कोई खरखसा है सुनाओ से पूछी जावा बोले क्यों खवास रख

0: बोले कल ये राजा कल कारण का है ई को राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहा कल ये रानी को वन में छोड़िया सजो पहुंचे बोले कल चलो बताओ कितने कौन छाड़ में छोड़ फिर जो रुख तरह छोड़े थे वही रुख तरह ये गए दोनों जन नाव नहीं गो भी दो ही गए सो बोले कल अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी वह धरी सुमाल के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद की बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कहते ठीक है उतर जाके इनने का किस्सा करो कि डीरा दो जन में गए सो उनने भैया मालिन ने उन्हें घड़ी आई बोले कल क्यों रे कहाँ के हो परदेसी कैसे फिर रहे तुम जगह बात वो हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा दे हाँ सुबह आराम से मालिन को साजा तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है वो रंग महल में पहुंच गई राजा गिलंद की अरो कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही राजन बोली कल दो घोड़े वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे उनने सब नाश कर दिया बगीचा का तो उनने छिड़ दिया चलिए तुमको राजा बुला रहे बोली कल हाउ साहब जब तो भी ऊंची हाथी भीड़ पुल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी ले के बोले उनकी गैल में सलाह हो गई बोले कल तुमसे बात करे से तो मूर काट दो और हमसे बात करे तो हम मूर काट लेते बोले ठीक है सुबह गए सो राजन की बगल में एक बोले बैठो बोले बैठो अब उन्होंने हाथों एक बीजक राजा गिलन गया कि अगर जो बीजक जी लोग पहुंच गए हम लड़की की शादी उसी के साथ करेंगे तो अब उनने की तो जब सलाह हो गई बस सकाय से काम लगाओ अब वो रानी ने डीरा जाओ डीरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलंद ने जो बात हो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ बोली कर ले नहीं ये राजा गिलंद को बाग कटे चल जी और जी मकान गिले चल जी सुबीर ने की तो ठीक है सुबीर जो बन जो काम लगो सुबीर अपने मजूरी खोने की जाबे जावे सुबह रानी जो बबीर थी सो छाजी पे वो दातन कर रही थी सो बीजक लाई थी बबीजक वही लोटा के कर रखती दातन वो लोटा में लिखो है तो सुबह बीजक खो गई जो बादशाह ने बात बीजन मछले बादशाह ने बीजन ने बात बोली कर ले ठीक है बोली कर ले कह तुम तसला पटकत पटकत वो ते सार पांच ही की पड़ रही और तुमने पहचान नहीं करी कछु तुम ना तुम सानो और हम झंडा रहे सुबह गए डारे सो आराम से गए डाल भी के लाने तनक तसला में से गिलाव पहुंच गए वो इमेज दाओ बेटी में दवा में जो राजा गिलंद की लड़की सो उन्हें अति सो अब जो खिलाड़ी है सो उन्हें वो ही लोटा दाओ वो ही लोटा उनमें दाओ सुबह ने अच्छा ले लाओ ये गेंद की बल्ला क्या और बल्ले लोटा हो गई बाग में पहुंच सुबह सुनने फिर भेजो छड़िया पकड़ लिया सुबह जब ये गए पकड़ा सुबह देख दाग के कर ले ये कौन मजबूर हैं ये तो कोई राजा है सर तो क्यों इनसे भूलत कैसे हैं बोली कर ले महाराज उतने नहीं है मजबूर संजीव तो जो राजा पाई बोली कर ले या पर बोले पकड़ लिया सुबह जब गए बोली कर ले आ रहा है चलो अब भी नहीं मिल गई थी वो बीजक उनने वहां से उसे पूरो एक का दो मिल रही दो मिल रही नहीं सुबह लेकिन फिर उनकी सलाह तो बात गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करे तो तुम काट ले सुबह राजा काउ समाप्त न कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगिया एक दिन आ तो बोले मेरे को खिचकी आके पहुंचे गए तो राजा ने कही कही बोले कर ले कही साहब कहाँ से रहने वाले हो कैसे हो बोले कर ले कि जी जी फिर वह लड़की की शादी करी उन उनकी रानी हती बात से हो गई।
1: देखो दोस्तों जातो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है।

है यानी कि कहानी खुद सुनी है और एक साथ को आनंद लाओ। अब एक के संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

0: आज हम आप सज्जन के लाने एक बहुत ही नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं। जी को भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करें और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल दादा हैं, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताएं। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को। जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के। अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सुन बताओ है, और अपन सज्जन ने सुनो है। अब अपन बात करते हैं राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कहाँ के रहे विवाह हो दादा?
2: सेना के पूर्व पटोक ग्राम सेना जिला टीकमगढ़ तहसील नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा कहाँ कर रहे थे?
2: ये हल्को हल्को काम कर रहे अपने दो बच्चे देखे ना
1: और
2: वर्कर हम कहा बस किए काम वाम हम कहा तुमने लगे।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का के विचार को जब से तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता रहा कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं उन लगत और का परेशानी दिखते हैं आती है अपन का
2: बुढ़ापे में? तो देखो ना खाना मुड़ा एक बात देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ निग नहीं पाओ घूरे फिराट हर एक बात की नेक में मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बात।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
2: अब वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो हमें नहीं आया तो हम खा रहे हैं।
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी आओ
2: आओ बैठ भी आओ नहीं आओ थे तुम सच है।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने हैं।
1: और अपने सेवा खुशामद के बारे में आप क्या कह सकते हैं?
2: सेवा खुशामद सब करा चुनेंगे जी बैठे अब बैठे भी है मतलब जो लोग ठीक नहीं है चला फिर कर लेंगे चलना
1: दिक्कत है उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
2: रात में झेल सका मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खाए तो ठीक ही है। अरे कछु ना कछु ना तो 10-15 रोज को तो खर्च है आदमी को मान के चलो कछु ना कछु 10 उठा के चल जाती है दिन भर।

0: आपको केस में कटा था?
1: दो बच्चे उनके दिमाग लड़ा ले अपने छाने में।
0: अच्छा, और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं आया थी?
1: हाँ,
0: जैसे का आप अब बुढ़ापे की
1: बुढ़ापे मतलब
0: मैंने दिक्कतें आदमी का
1: दिक्कत तो देखे के नहीं होती नहीं है। तुम है जो कागज है जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब और उसी ही दिखा कगदा नहीं बांस पाऊ मेरे दिखा सक रहे।
0: और अच्छा, ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सका तो खावे पीवे की आपकी का है?
1: खावे पीवे की कोई तकलीफ नहीं है जो घर में है तो खा।
0: अच्छा, अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है?
1: पहले इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती, इज्जत नहीं आया और पापा जाना फेरी पापा जी जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी हो चार आदमी हमारे वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारा मिल जाए दूसरी की जठानी ना मिल गए दीवानी ना मिल गए ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
0: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो चाहिए अभी के सब का
1: जब जो हो चाहिए कि शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति नहीं आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति नहीं आए।
0: अच्छा, जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
1: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में उबर का जो काम नहीं कर प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
0: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा टका खर्च ना उज्जे
1: हाँ घरे पैसा ले मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा को काम नहीं।
0: तो अपनो का के वो है रेडियो में जो भी आप सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाची और कैसे रहे चाची आपका कंचाओ सब जनन से आपको का के वो है?
1: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे कि बाप मताई की सेवा करें
0: तो वही बात तो, बड़ी बात तो,
1: मतलब
0: शुरू से आप
1: तीर्थ यात्रा ना कछु
0: हाँ यही बात आप यही बात पूछन चाहो शुरू से बता दो आप आप का के वो चाहते
1: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान को माने सब इज्जत ले प्रेम ले लक्ष्मी जी ले सब मतलब नहीं के रूप है जो बाप मताई को ठुकराओ तो तुम्हारे बाल बच्चे ठुकरा मतलब आगे चली जाइए तो पूरी मतलब
0: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे।
1: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे नहीं करते जा कर है जो मतलब है जब कहोगे चले जाओ पैसे आ चले गए अब जैसे पैसे ही नहीं आता तो कहाँ जा रहा है क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आंखें से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है टेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
0: और का के वो चाहू था
1: जी उचाउ आराम चाहू बस मिल जावे टेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को समाज खाने दिए तीन चार सौ महीना मिल गए तो अपने उम्र खाद चलाओ।
0: ठीक है दादा, जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भैया, अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते, कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखबे चारों धाम करे। और भैया ये तो बातें अपनी अबे हतीसो सब जन ने सुनिए ही है, लेकिन आप लोग जा भी कह रहे उन्हों को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं। तो भैया अपन सुनो सवई पंच भैया।

या अपन और सुनत है एक गीत को जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाएं। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

हाँ तो भैया अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम सुनो जी का केर है। ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आउत है कार्यक्रम को सुनो जी का केर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बतावें, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावें भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे

दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हो जाए, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को, तो नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार और कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे
2: हैं? दीनदयाल बोल रहे हैं सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं?
2: ठीक है सर, बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो? ऊंचे पहाड़न पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करे हैं?
2: ठीक है सर।
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोग के पाए, ऊपर वाले के पाए, और सब किसी बहुने बहुने वाने हो गई, पानी आने लग रहा हो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदेली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो? प्रियंका
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: बुलबुल जी की आवाज में?
1: हाँ
0: चलो ठीक है। अच्छा गीत के बोल बता पाए आप?
1: तो एक गीत कोई गाओ तो सुनवा दीजिए थोड़ा।
0: अच्छा चलो
1: बोल
0: ठीक,
1: तो हाँ, बोल याद नहीं आ रहा है।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनाए हैं।
1: ठीक है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो एक बार

नादिया भागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सक जाने टिपरारे अपनी हवा हवाई में।

कहना है कि मांग लाल है बिंदिया भाल है कंगना कलाई में और चंद छबी

0: शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: सुंदर खान नंबर 10 नंबर 4 साल।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाऊ से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है?
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
1: ओके सर,
2: नमस्कार भैया जी।
1: नमस्कार।

0: माता सिंह भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो वाला भजन सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथे मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही वाला सुना दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवाए हैं।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे जो बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

कार्यक्रम मेरी मुंडली मेरे बीच से अपने दोस्त माता दिन खुद जाने की अनुमति साथियों अपने अपने फिर हुई है मुलाकात एक कार्यक्रम में जब तक के लाने नमस्कार।

गलियों गलियों फिरता हूँ। कब से? जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारा।

0: ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी गाय और कहीं ना
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ये तो भूल लगो बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जब सत्य कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना कल तलक।

और जब पूछना कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे तो जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले, हंसे हंसे

0: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई भी बारे हमारे सब श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करते हेंगे आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हेलो फरमाइश में आप जाना थेंगे कि तनक देर हो गई है कि हमें सो आप सबको पता है कि वैसे तो देर नहीं भैया की, क्या अपने स्टूडियो की घड़ी में एकदम से बजे हेंगे 12 और 12 जैसे बजे थेंगे सो अपन और यहाँ तो जाऊ थेंगे और आवे के संगे आप सबके बीच में बढ़िया बढ़िया सी बातें लेके आऊ थेंगे और आप सबकी पसंद के गीतन को भी हम सुनवाऊ थेंगे। सो हम तनक जो देर हमें भई हैगी बा ईसा भई हैगी काहे कि आज सावन को दूसरो सोमवार भी हैगो सो तनक पूजा रचा करवी में और बला सारी चीज़ें होती जिससे तनक देर भी हो गई हैगी। तो अपने संगे अपने पहले श्रोता जुड़ चुके हैंगे। हेलो नमस्कार,
1: परम आदरणीय वर्षा दीदी को शादो सप्रेम प्यार है नमस्कार।

0: नमस्कार, कैसे हैं शारदा प्रसाद जी?
1: दीदी, मुझे बहुत ही खुशी और प्रसन्नता होती है जब आप हमें पहचान लेती हैं और हमारे नाम से संबोधन करती हैं। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आपका आशीर्वाद है, भाग्य बिहारी कृपा है। और जैसा कि आपने मुझे पहचाना, श्रोताओं को जानकारी देता हूं कि मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा सेवा तालाब का राम बुंदेलखंड ओरछा से, आदरणीय वर्षा दीदी से।
0: जी बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी को।
1: जी
0: तो
1: दीदी, हृदय से धन्यवाद आपको, बुंदेलखंड ओरछा परिवार को और सभी श्रोताओं को। सावन और सावन के द्वितीय सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। देवों के देव महादेव सबका कल्याण करे, इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। नंदी का घुंघरू बोले, जय शिव शंकर जय शिव शंकर, फिल्म का नाम संत ज्ञानेश्वर।
0: जी बिल्कुल, और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। और बताइए आप कैसे हैं?
1: दीदी, मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मथुरा वृंदावन में इस वक्त चमचमाती
2: एकदम
1: हुई
2: मेहमान
1: धूप
2: हो
1: है
2: गए आप।
1: और बिल्कुल शांत वातावरण है, कोई हवा बिहार नहीं है, और गर्मी से थोड़ी उमस भरी जो है ना, उससे परेशानी लग रही है।
0: जी बिल्कुल, ये माहौल हमें लगता है सभी जगह है, और जो धूप निकली हुई है ऐसा लग रहा है कि ये धूप नहीं पानी है जो कि कुछ ही देर में बरसने वाला है ऐसा लगता है। लेकिन आसमान कहते हैं ना, आशा से आसमान टंगा हुआ है, तो हम सब भी
1: जी,
0: आशाएं
1: मतलब
0: लिए हुए हैं।
1: प्रलोभन सूर्य देवता और इन देवता दे देते हैं, उनमें नोक झोंक लगी हुई है कि कौन आगे निकल जाता है।
0: जी
1: कभी इन देवता प्रकट होने की अपेक्षा करते हैं, कभी सूर्य देवता तो प्रकट ही हो जाते हैं। और
0: जी
1: इसी ताना तानी में हम जो है पृथ्वीवासी परेशान रहते हैं, और ऐसा लग नहीं रहा कि ये सावन का झमाझम जो रिम झिम फुहार और बरसात का दिन होना चाहिए, वो ऐसा वातावरण दिख नहीं रहा दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, आप एकदम सही कह रहे हैं। क्योंकि सावन का तो वो महीना जब होता था तब एकदम फुहार जो होती थी, हल्की हल्की सी फुहार हर रोज गिरा करती थी, और
1: जी,
0: लगता था
1: रिम
0: कि
1: झिम की
0: हाँ
1: झड़ी और
0: बारिश
1: फुहारों
0: आएगी।
1: की झड़ी जो है बरसात की, वो टूटती नहीं थी, और हम बहुत ही आनंद की अनुभूति करते थे। पूरा वातावरण हरा भरा और बाग बगीचे, फूल फुलवारी, बगिया, सब कुछ बहुत ही सुंदर लगने लगता था,
0: जी
1: हरा भरा।
0: बिल्कुल, चलिए तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। और भी हमारे श्रोता लाइन पे हो।
1: जी, हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

चंदी का घुंघरू बोले जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोता भैयारो, हम बता दें आपको कि आज दूसरा सोमवार है। एक छोटी सी कहानी हैगी दूसरे सोमवार की, आपको बता रहेंगे भगवान शिव और एक साहूकार की भक्ति से जुड़ी भैया कथा आएगी। और कथा के अनुसार एक नगर में एक धनी साहूकार रथ थे जो कि शिव को परम भक्त मानत थे, मतलब शिव जी के परम भक्त थे वे। लेकिन संतान ना होवे के कारण वे बहुत दुखी रहते। लेकिन कठिन तपस्या के बाद शिव जी ने उन्हें पुत्र तो दे दो, पर उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की बताई। समय आवे पे पुत्र की आयु पूरी भई और उनको विवाह भाव, किंतु शिव की कृपा से उनकी जान बच गई। तो कहानी हमने बहुत संक्षिप्त में आपको बता दी हैगी, हालांकि जो कहानी बहुत बड़ी है, इसके ऊपर पूरी एक फिल्म भी बनाई गई हैगी। आप सब जने जरूर देख सकते हैं फिल्म को और पूरी कहानी भी आप ज़रूर सुन सकते हैं। भगवान शिव और साहूकार की जो कहानी हती, जो 12 वर्ष की उनके पुत्र को आयु दी गई हती, उनके अनुसार वे बहुत दुखी रह लगे थे कि हम जो है अब कैसे जिए, हमारे पुत्र की 12 वर्ष की आयु हो भी वाली है और इसके बाद हमारा पुत्र जो है वो भगवान के पास चलो जाए। वो तो अकेले में जब भी बातें कर रहे थे तो उनको जो पुत्र है तो उनको भी जा बात पता चल गई हती कि हमारी आयु इतने वर्ष की हैगी, इसे आगे हम जीवित नहीं रह सकेंगे। तो भाव का कि उनने जैसे ही सोची कि ये वर्ष हम 12 वर्ष के हो जाए, तो उनने कही हम कांवड़ लेके, पिताजी हम कांवड़ लेके जावो चाहते हैं। तो वे कांवड़ लेके चले गए थे और कांवड़ लेके जा रहे थे तब उनकी शादी पहले हो गई थी, उतनी वही रास्ता में हो जाते। पूरी कहानी हमें खुद नहीं पता, आप पूरी कहानी ज़रूर सुनिए, बड़ी अच्छी कहानी है। बीच बीच की जो बातें हैं वे हम आपको बता रहे हैंगे। और उनकी शादी हो जाती, फिर उनकी जो पत्नी हती वे भी शिव भक्त थी, बहुत ज़्यादा पूजा करती। तो उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने जो है उन्हें आगे को जीवन दाओ और उनकी मृत्यु नहीं भई। तो कथ है ना, भोलेनाथ जी बड़े भोले हैंगे और सबके मन की बात ज़रूर सुना थेंगे। उनके ऊपर आप एक लोटा जल ही चढ़ाओ तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते। तो ऐसे ही शिव भक्ति में हमारे सब शिव भक्तन के लाने जो है गाना हम आज के लेके आए हैंगे। और देखो एक और बात आपसे क्या वो चाहते हैं, कांवड़ की जब बात आतेगी तो कांवड़ बहुत सारे कांवड़ निकल रहे हैंगे इस बार, तो कांवड़ी यात्री जो हैंगे भी अधिक से ज़्यादा हैंगे। हर साल की अपेक्षा इस बार तना कछु ज़्यादा ही हैंगे जो हम देखत रहते हैंगे रास्ता में। तो आप लोग जितने जो नदियन तक जाते हैंगे कांवड़ भरवे के लाने, बहुत साफ़ सुथरी नदियाँ रहती हैंगी, लेकिन आप अगर जाते हैंगे होते और आप देखते हैंगे कि गंदगी हैगी, मतलब आप खावे पीवे की चीज़ें ले जाऊत होगे, बोतलें ले जाते हैंगे कई सारे। तो ऐसे भक्त भी होते हैंगे जो कपड़ा पहन के जाऊत हैंगे भी, कपड़ा होता है नदियन पे छोड़े आऊत हैंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो नदियन को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप गंदो कर वो छोड़ दो। तो कांवड़िया जो भी लेके जा रहे हैंगे उन कांवड़ यात्रियों से हमारा निवेदन है कि आप जो नदी से कांवड़ भरत हैंगे उसमें साफ़ सफाई को थोड़ा सा आप विशेष तौर से ध्यान रखें। जो आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम सबकी ज़िम्मेदारी हैगी। तो जब भी आपको कोनो कचड़ा फेंकने है को तो उते पास ही में डस्टबिन कूड़ेदान रखे रहेंगे, आप उनको इस्तेमाल करवें। अपना कूड़ा या कचड़ा जो भी आप प्लास्टिक लेके जा रहे हैंगे नदी में ना फेंक के आप कूड़ेदान में डालवें। कपड़ा भी आप कूड़ेदान में डाल सकते हैंगे, आपके कपड़ा अच्छे हैंगे तो कोनो को दान भी कर सकते हैंगे। ऐसे फेंकवे से तो अच्छा है ना कि कोई के काम आ जाए वे। तो चलो हम सुनते हैंगे एक और भक्ति भरो जो गीत, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ।

0: श्रोताओं, एक ही संगे हमारे संगे एक और श्रोता साथी हमारे जुड़ गए हैंगे। हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार वर्षा जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: अरे हरबिलास जी, कैसे हैं?
1: अरे आपकी दुआई से पास बहुत अच्छी तरह से यहाँ दूसरा सोमवार तो व्रत भी रहे हैं, बेलपत्र भी चढ़ाए हैं अभी अभी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप बेलपत्ती भी चढ़ाए आए हैंगे, भोलेनाथ को मना भी आए हैंगे और फिर आके आप लाइव में भी जुड़ गए। बिल्कुल, तो बताओ फिर आज दूसरे सोमवार के दिन आपको कौन सा गीत सुनने हैं? वो
1: आज गीत सुना देना, फिल्म का नाम है आपकी कसम, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर।
0: अच्छा, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकड़। बिल्कुल, हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो गीत। और कुछ क्या वो चाहते हैं? हेलो हरबिलास जी,
1: जी
0: और कुछ क्या वो चाहते हैं या फिर सिर्फ गाना सुनने आपको?
1: बस गाने ही सुना दो और क्या कहें, बस बढ़िया ये सब कुछ।
0: चलो ठीक है, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो गीत। नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: एक बार फिर से आप सबके बीच में हमारे एक और साथी जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार।
1: हेलो। हाँ
0: जी नमस्कार।
1: जी, योगेश चांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी योगेश जी, नमस्कार। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं
0: बढ़िया है,
1: जी।
0: बढ़िया है।
1: हाँ जी, एकदम बढ़िया।
0: चलिए तो बताइए योगेश जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म आया सावन झूमके का टाइटल सॉन्ग सुनवा देंगे
0: आया सावन झूम के।
1: जी।
0: जी बिल्कुल, आया सावन झूम के हम आपको गाना सुनवाते हैं। और कुछ
1: जी
0: कहना चाहेंगे? और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बाकी सब अच्छे हैं
0: बाकी सब अच्छा है?
1: जी।
0: चलिए आइए सुनते हैं हम आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।
1: जी।

0: एक बार फिर से हमारे बीच हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, सुन पा रहे हैं?
1: जी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सुरन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश
0: मोहम्मद हारून
1: जी।
0: जी। सर नमस्कार, कैसे हैं हारून जी?
1: और आप कैसी हो?
0: मैं बढ़िया हूँ। बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मौसम कैसा है आपके इधर?
0: हमारे यहाँ मौसम धूप निकली हुई है, उमस भरी गर्मी है और बादल
1: जी,
0: छाए हुए हैं।
1: बारिश नहीं हो रही है आपके इधर? जी,
0: नहीं, अभी हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। आप क्या हो रही है क्या?
1: हमारे उधर से तो बारिश हो रही है पहले परसों से जी।
0: महुआ।
1: जी
0: अच्छा हरुण जी, आपसे एक बात पूछनी थी। महोबा
1: जी
0: के आसपास, मतलब महोबा जिले में स्थित है कोई शिवजी का बहुत पुराना मंदिर है जो 140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है?
1: जी नहीं, हमारा मध्य प्रदेश है,

0: जी
1: हमारे ये मध्य प्रदेश है। मध्य
0: नहीं, मध्य प्रदेश तो है,
1: प्रदेश जी
0: मध्य प्रदेश तो है, लेकिन महोबा जिला है ना आपका?
1: नहीं, जिला विदिशा है
0: अच्छा, विदिशा जिला से है, क्षमा करिए,
1: जी।
0: हमें लगा कि महोबा जिले से आप बात कर रहे हैं।
1: नहीं वो सुनने में फर्क आया होगा, गलती हो गई है
0: अच्छा
1: सुनने में,
0: हाँ, गलती हो
1: जिला
0: गई है वो।
1: सुनने में कुछ गलती हो गई है, जिला विदिशा है जी।
0: जी, चलिए तो बताइए, गाना बता दीजिए आप।
1: फिल्म का नाम है जख्मी सिपाही, तुम
0: गाने के बोल
1: शर्मा के जी,
0: तुम शर्मा के
1: देखोगी
0: आगे।
1: तुम मुझे
0: अच्छा, तुम शर्मा के देखोगी मुझे,
1: जी।
0: मिथुन जी
1: चलो
0: है इस
1: होस्टिंगा
0: पे।
1: के साथ अपना बिजनेस मिल जाएगी फिल्म का, दूसरी बताऊं
0: नहीं, मिल गया है, कुमार सानू जी की आवाज है,
1: जी। जख्मी
0: जख्मी सिपाही फिल्म का नाम।
1: सिपाही
0: जी बिल्कुल, आपका गाना मिल गया है, और कुछ कहना चाहेंगे या गाना सुनेंगे?
1: बस, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये
1: जी,
0: गीत।
1: धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, आइए हमारे साथ हमारे एक और साथी जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी उनका फ़ोन कट गया है। सो कोई बात नहीं, हम उनका दोबारा फ़ोन का इंतज़ार करते हैं।

0: लीजिए, हमारे श्रोता का फोन फिर से आ गया है और हम करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो। अरे
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम जी, बड़े अभी तक पहली बार हुआ है, 3-4 बार बेल जा रही है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ जो आज हो रहा है।
0: आज हो रहा है क्योंकि आज हम आ गए हैं ना, इसलिए।
1: इससे पहले नहीं, आप अभी पहले थे लेकिन इतनी कष्ट हमें नहीं लगाने पड़े हैं कभी भी।
0: कोई बात नहीं, कभी कभी अच्छी चीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है।
1: कोई परिवार ऐसे में कार्यक्रम नहीं चल रहा था, इसका भी मेरे को कुछ ये नहीं लग रहा। मैं बोला क्या है, ज्यादा तो नहीं चल रहा था,
0: नहीं, कार्यक्रम तो चल रहा है।
1: नहीं एक दो हफ्ते नहीं चल रहा था, बीच में चल नहीं रहा था।
0: नहीं, उस टाइम पे जब पिछले बुधवार को नहीं चला था क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही
1: हाँ
0: थी,
1: जी हाँ जी हाँ
0: तो इस
1: हाँ
0: वजह से नहीं चला था। बाकी सोमवार को हुआ था लाइव।
1: ऐसा होता है, शायद
0: हाँ,
1: मेरा नेटवर्क का कोई फॉल्ट होगा
0: हो
1: फिर
0: सकता
1: उस।
0: है। तो
1: हाँ जी
0: बताइए।
1: जी मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमदुरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे मैडम जी।
0: जी मोहन जी, सदियां बीत गई आपकी आवाज सुनने को।
1: हाँ जी अभी खेत में ही है मैडम जी, भैंसा चरा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो मैं बोला चलो लगाएंगे, 11:30-12 बज रहे हैं अब। अभी
0: हाँ, बहुत अच्छा किया। आपकी भैंसे ठीक है?
1: बिल्कुल बिल्कुल साथ में है।
0: तो आज क्या सुनना है, क्या फरमाए थे?
1: फरमाइश देखो, अब श्रावण महीना चल रहा है, अब हमारे लिए एक मराठी गाना सुना देते या नहीं?
0: अब आप बता दीजिए, अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम सुनवा देंगे, और नहीं आएगा

0: आपको हिंदी बताना पड़ेगा।
1: कोई बात नहीं, देखिए एक मराठी फिल्म है, फिल्म का नाम है वाजुका। हाँ? और उसमें गीत महेंद्र कपूर की है, दादा कोंड के है, महाराष्ट्र के एक बहुत अभिनेता, और उनके ऊपर चित्र के और गीत के बोल है, श्रावण महीना तो वारा झुलझुल गातो या झुलझुल गातो या।
0: श्रावण महीना
1: हाँ, वारा
0: वारा
1: झुलझुल
0: झुरझुर
1: हाँ झुल झुल झुर झुर, वो हिंदी में आ रहा, मराठी में है।
0: आ गया।
1: हाँ जी हाँ, वो सुना दीजिए, श्रावण महीना तो वारा झुल झुल गातो या। दादा कोंड के ऊपर चित्रांकित हुआ है उषा चौहान।
0: हाँ, हाँ, हाँ, आ गया, वही गाना आया है,
1: महेंद्र कपूर की आवाज है।
0: जी जी बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, आप आज हमने आपको महाराष्ट्रीयन गाना सुना रहे हैं।
1: तुम दिल से सुनो, देखो इस गाने में क्या है, अंतराले सुनो, देखो किस तरह से है गाना, तुम्हें हिंदी में बोलने है, इसका अनुवाद करो फिर।
0: जी बिल्कुल, चलिए हम सुनते हैं आपकी
1: ओके
0: पसंद का
1: ओके,
0: ये गीत। नमस्कार,
1: थैंक यू।

0: नमस्कार एक बार फिर से आप सभी के बीच में, और लीजिए हमारे साथ हमारे अगले श्रोता भी जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार।
1: जी हेलो नमस्कार
0: नमस्कार जी, नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके?
1: जी। बढ़िया है, अभी बारिश आ रही है, ऐसी ही चल रही बारिश का।

0: बारिश ऐसी की चल रही नहीं
1: अभी।
0: सुना ही नहीं रही बारिश क्या कर लिए हैं
1: जी, यूपी झांसी बुंदेलखंड जिला, झांसी बुंदेलखंड ग्राम अटौनना थाना रक्षा से प्रीतम सिंह यादव बात कर रहा हूँ।
0: जी प्रीतम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताओ कौन सा गीत सुनने आपको।
1: आज गाना सुनेंगे, वो श्रावण का महीना चल रहा है तो आज शिव जी का दिन है, तो वो वाला गाना सुनना है, पी के शंकर जी की बूटी, अखियां खुल गई नंदिया टूटी।
0: बिल्कुल, लेकिन पीने नहीं आ
1: हाँ
0: गाना ही सुन लो हाँ गाना सुनो, मतलब पीने नहीं है लेकिन चलो तो बिल्कुल हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं प्रीतम जी। आप
1: जी
0: सुनिए जो
1: धन्यवाद।
0: गीत। नमस्कार।

के शंकर जी की बूटी अखियाँ खुल गई, और काका कही थी पता नहीं क्या, लेकिन आपको ध्यान रखने है गो कि शंकर जी ने तो बूटी पी हैगी लेकिन आपको नहीं पीने हैं। तो सावन को महीना है गो, प्रेम से भगवान को नाम लो, भगवान को जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ और बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरे चढ़ाओ, उनसे विनती करो, लेकिन कोनो भी उनकी जो नशीली चीज़ें हैंगी ऊखों आपको नहीं अपनाने हैं। वो काहे कि भी शंकर जी के ऊपर अच्छी लगती हैंगी, हम इंसानन के ऊपर नहीं लगती हैं। तो इसे अपन को का सीख मिला थेगी कि जो सिर्फ एक गाना है तो और मनोरंजन के लाने हैं, तो बाकी जो भी नशा की चीज़ें हैं ना, वे सब भोलेनाथ जी को अर्पित कर दो, वे सब संभाल ले थेंगे। जब हलाहल जैसे विष को उनने संभाल लो है को, तो ये तो सब छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अपन इंसानन के लाना है जे नशा की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। तो आओ यही क्रम में आगे बढ़त हैंगे और एक और गीत सुनत है लता मंगेशकर जी की आवाज़ में।

0: तो एक बार फिर से आप सबको बहुत ही बहुत स्वागत करते हैंगे और हमारे संग हमारे अगले श्रोता भी जुड़ चुके हैंगे। हेलो नमस्कार।
1: नमस्ते भाई।
0: अरे नमस्कार राजेश भैया, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है। खाना खा लो। खाना खाया थे?
0: बिल्कुल जरूर। अब आपको लाइफ खत्म करें उसके बाद जी हम खाना खावे। का बन गो आज?
1: बढ़िया है बस, वही रोज। अब तो
0: अरे हमारे तो नहीं हो रही, तो पहुँचा दो तना
1: कब से?
0: अबे तो नहीं भाई, कल भी नहीं भाई थी, आज भी नहीं भाई, परसों भी नहीं भाई थी, 7 तारीख को जरूर हो गई थी। चलो तो अच्छी बात है, कितना तो बरस रहा हूं।
1: आ पैसे तो कही थी हमने, रिक्वेस्ट किया मेरे भाई साहब पहले, तो आपने कहा कि हमारे पास सका बात का सही।
0: हां कही थी आपने।
1: बिल्कुल सबसे समय पे बात हो रही, हमारे हर बार बार समय पे हो रही है।
0: हैं हर बार समय पे हो रही।
1: बिल्कुल
0: न्यूज़ समय पे मिल जाता आपको कि नहीं, कि आप बारिश हो भी भाई है।
1: बिल्कुल।
0: चलो तो बहुत बढ़िया बात है, बताओ फिर कौन सा गीत सुनना है?
1: वो मेहमा फिल्म में है, हे शंकर पधारो बैठे चुपके का।
0: हे शंकर पधारो,
1: हाँ बैठे चुपके का।
0: और बताओ क्या चल रहा?
1: और सब बढ़िया है?
0: और सब बढ़िया है।
1: घूमे आए कालिया पन्ना चित्रकूट अंसुईया।
0: अच्छा आपके पास तो हुई है ना वो जो हम महोबा जिला के पास, आपको मतलब जानकारी तो हुई है
1: मौसम विभाग की?
0: नहीं नहीं

0: पर्वत भी
1: पंजाब
0: नहीं,
1: नहीं, कौन
0: एक पहाड़ी पे मंदिर है गौ शंकर जी को, बहुत ऊंची
1: जगह?
0: पहाड़ी पे है, महुआ जिला में है लेकिन।
1: महुआ जिला में तो
0: हाँ
1: डांडा है महुआ।
0: महुआ जिला में है, और 140 फीट की ऊंचाई पे पहाड़ी है, बहुत
1: हाँ है
0: मतलब पुरानो मंदिर है वो। हमें वो कितना लोकेशन क्लियर पता नहीं चल रही कि कितने
1: तो
0: है।
1: टांडा है महोबा शहर ही में है अंदर।
0: शिव तांडव,
1: हाँ पहाड़ी पे है मतलब शंकर जी की मूर्ति है शायद।
0: हाँ काफी ऊंची पहाड़ी है ना।
1: हाँ पहाड़ी है मतलब शहर में कहीं। छोटी चंद्र का मंदिर है, बड़ी चंद्र का है वो तो मतलब बहुत सीधा जाते हैं।
0: अच्छा तो महुबई में है,
1: हाँ महोबा शहर में है बहुत
0: सहरई में है।
1: होते। काफी गुफाएं भी हैं पहाड़ में मतलब ऐसे शिलाएं हैं जैसे कोई ने बना के रखी हैं शिलाएं।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही बहुत पुराने मंदिर हैं, मतलब जो उस समय के हैं, ऐसा कहो जाते कि
1: हाँ
0: जब।
1: गोरखगिरी पहाड़ है, सीधा रसोई है वहीं गोरखगिरी पहाड़ है ना जो योगी आदित्यनाथ आए थे मुख्यमंत्री जी। तो
0: अच्छा,
1: वहीं यहाँ कली मेला लगा, ऐतिहासिक मेला लगता है हर साल सावन
0: हाँ,
1: की कली मतलब सावन के नक्षत्र के दिन बाद लगा।
0: अच्छा
1: दस दिन 15 दिन तक मेरा लगा। आइयो आप वही दिखाएं
0: हाँ, वही हम सोच रहे हैं कि जाए चाहिए सावन में होते हैं।
1: आप। आइयो आप ट्रेन से बाहर कौन सीधे वही तन्ने रेलवे स्टेशन के पास ही 1 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा, चलो तो हम आए तो आपको जरूर बताएं।
1: हाँ बताइयो आप आए।
0: चलो तो सुनाते हैं आपकी पसंद को जो गीत, और अपना समय भी अब हो रहा है वो।
1: नमस्ते बाबू।
0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो फरमाइश को अब समय भी तो समाप्त हो रहा है को। तो आज को जो कार्यक्रम आप सबको कैसा लगा, हमें ज़रूर फ़ोन के माध्यम से या संदेश के माध्यम से बतावें। जी की लाना हमारा नंबर है 1920-77-49। और अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दे जबी की अनुमति, हमारी और आपकी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक आप सब जने ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुरात रहें, और रेडियो बुंदेलखंड सुनत रहें। जय जय भोले, नमस्कार।

जाब बिजनार सतावे के मैया मुए जाब बिजनार सतावे। अब आओ आगे सुनते हैं कि जीवन नैया भूला नाथ हमारे। देखो कितना प्यारो भजन अपन अब आगे सुनवे को जा रहे हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

0: केवल संघ के लाने एक ही सुनो भाई साधो कर गए सदन कसाई।
1: अरे भैया का बात है, अपन ने देखो तो इतने नोने तरन एक शब्द केसो नोनो आगा के तर गए तैन कसाई।
0: तर गए सदन कसाई, सदन कसाई की कथा बहुत ही बढ़िया कसाई है।
1: हाँ।
0: कि सदन कसाई का काम करते काशीराम भैया जी के बे अपनो काहे के उनको काम हतो कि चोरी डकैती करके लूट माट काट करके और अपने घर को कम खर्च चलाउते। तो एक दफे की बात है कि जब वे लूट मार करके अपनो जो काम चलाउते हो घर के सभी सदस्यों को खुआते कमा कमा के, तो एक बेर भगवान जी उठे से निकले और भगवान जी ने कही कि आदमी को एक कल तो थोड़ी बहुत देना चाहिए कि जब तुम जो काम कर रहे गलत काम तो तुम्हारे ये गलत काम में तुम्हारे घर के भागीदार हैं कि नहीं। सो भगवान जी उतर से निकले सो उनने कही के जिनने इस भगवान को गला पत्रा सा फड़ा छुड़ू लाओ। सो उनने कही के भैया तुम जो लूट माट काट करके कहा ले जाते, तो उनके अपने घरे ले जाते और अपने घर के परिवार को खुआओ पियाओ तो हमारे घर की आजीविका चल रही। सो इनने कही जा बताओ कि हम तुम्हें सब दे रहा हूँ, चलो ले जाओ तुम, लेकिन तुम अपने घरे जाके और जितने जनन को खुआओ पियाओ थे उन सबसे जा पूछो कि हम जा हाय हत्या को ले आ रहे मार काट करके ले आ रहे तुम्हारे हमारी पाप में भागीदारी हो के नैया। ठीक। सो भैया जी गए बोले यहाँ तुम भाग जाओ, उन्होंने कही हम ना भागे तुम हमें पेड़ से बांध दो। सो फिर वे बोले हाँ बांध दो। अब बांध के जे घरे गए घरे घरवाई से पूछी और सबसे लड़का बांध से पूछी कि काय भैया तुम्हारे जा बताओ कि हम जो हाय हत्या को ले आ रहे हमारी पाप की भागीदारी तुम्हारे बनो के ना बने। तो घरवार बोले हम काय के तुम्हारे पाप की भागीदारी बने, तुम कर रहे पाप से तुम भोगी।
1: माता दीन भैया एक तनक कछु बात का है कि उनके दिमाग में जो कसाई है तो वो उनके दिमाग में का हती कि जो जो घर है हमारो और जे जो मोड़ी मोड़ा है ये सब हमारे आए और ये सब मतलब जो कछु है तो ये कहीं माया जान लगती है कि हम जो काम कर रहे हैं तो ये सब हमारे संगे जे और संग के हमारे भागी हैं, तभी तो वो मार काट काट करके गलत काम करके लिया।
0: सही कह रहे
1: हैं। अब उनके दिमाग में काफी भज्जा कि वो जानत नहीं
0: है
1: इनको परिणाम
0: का भुगत नहीं,
1: का भुगत नहीं।
0: तो फिर एक बार फिर का भाव कि जब फिर उन्हें फिर छोड़ दो वो सब काम न मार काट करी न कछु करी
1: नहीं। तो उसे ऐसे का भाव कि जब भी पूछ भी आए कि काय भज्जा और जो हम हाय हत्या जो मार रहे हो जो काट रहे और जो हमें जो पाप मिलने या जो हमें कीड़ा पड़े या जो हमें
0: सजा मिले
1: तो देखो सब जने खा रहे
0: आप सबको भोगने आए।
1: काय भैया अपन कभी सब्जी भाजी ले आओ तो घर में सब जने खात के नहीं,
0: बिल्कुल
1: अपन काम धंधो करके ले आए तो सब जने खात के नहीं।
0: सही कह रहे।
1: लेकिन उन सदन कसाई को भी क्या वो सही है तो
0: हाँ।
1: कि हम ले आ रहे तो जा बताओ

0: फिर उनने कही के अब हम आस में बंद करा और बंद करके भी एक तला के किनारे एक बरिया के पेड़ की तरफ बैठ गया बैठ गए। सो उते काहे के एक में तलज्जा में पानी भरो तो
1: हाँ।
0: सो एक आदमी लगा रहे तो उते का ढेकड़ी पानी पीवे खोते या उतनी डोंकिया सो वो डोंकियन के चक्कर में ढेकड़ी लगाए तो उते और तलज्जा में ढूर जाते पानी पीवे उन्हें कह अगर ये ढोर इतने पानी पी भी आए तो भी डोंकियां उड़ी जाती हमारी बार ढेंकड़ी लगी सुबह छटक जाती तो उन्हें ढोरण को पानी ना पियन दे वो
1: अच्छा वो जो घेरे हैं तो वो पानी
0: हाँ
1: जो पानी घेरे हैं तो वो बिल्कुल नहीं पियन दे वो
0: तो देर लाख भगा दे ढोर
1: अरे भैया।
0: अब जब सदन कसाई ने देखो तो सबके मन में आई के इतने पाप करे तो एक और सही
1: चाने की सौ सौ भी तो एक भी
0: एक भी हो सही तो भैया का भाव के उनने जैसे में ढोल भगा से ने भगा भी बाय में दौ से उगे हो कह दो सब ढोल ने कर पानी दम से पियो। अब जब उनने पानी पियो सो दही असी
1: अब देखो भैया कभों कभों का हो के दूसरे के परोपकार कर भी से तो भैया जो तो अपन जानते ही हो सभी जने जानते खुद को
0: जब उन पशुओं को पुण्य मिलो
1: आशीष दई
0: हाँ आशीष जब मिलो
1: हर सांस ले के
0: हाँ जब सदन कसाई के सबरे पाप कट गए
1: लेकिन भैया फिर
0: ऐसे कबीरदास जी ने कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधु
1: तरी गए सदन कसाई और हरी जपा कर भाई जी
0: हाँ
1: ये भैया हरी को जपो जी से अपन खा आगे की रास्ता खुले और या भी कही के सुगा पड़ावन गन का तर गई तरी गई मीरा भाई
0: हाँ।
1: देखो भैया जे काम जब तक अपन अपनों कर्तव्य ना करें तब तक अपन खा
0: बिल्कुल
1: ऊ चीज को लाभ ना
0: मिले
1: तो ऐसा ही है
0: सही
1: आखिरी पे तो हम देखो कबीरदास जी का कह के भैया एक काम करो फिर वे उनने ये कई मन में अपनाओ
0: हाँ
1: सदन कसाई जब उतर से आए उनने कही जब भैया हो भैया को उन्हीं के दे संग न को दे तो अब तो भजो रे भैया
0: हाँ,
1: अब उनके विवाद में ये कही आ गई कि अब तो राम नाम भजो और भजो रे भैया राम नाम गोविंद
0: हरी
1: जब आदमी धक्का खा जा
0: हाँ,
1: जब आदमी चोट खा जा और तब आदमी की का कहना है समझ में आओ
0: हाँ के समझ में आ गई हाँ।
1: जब सदन कसाई का ये बातें अपने घर ही से शिक्षा मिल गई उन्हें
0: सही
1: जिन्हें भी मार मार के काट काट के वो ले जाते और उन्हें खबाऊ थे तब उन्हें भंजन ने का कह दी के भैया तुम कर रहे सो तुम्हें जान
0: हाँ तुम्हें भुगतो
1: तो जब उनकी देखो समझ में आ गई तो वे का फिर कबीरदास जी ने लिखो ऐसे लोगन की लाने के भज रे भैया राम गोविंदा हरी भजो रे भैया
0: हाँ।
1: भजो रे भैया राम गोविंद हरी को
0: सही कह रहे
1: जब तप सघन कछु नहीं लागत और खर्चन नहीं गठरी देखो का कह रहे ना तो भैया ही में हमें कछु साधन चाहने ना हमें कोनो
0: खर्चा चाहने
1: और ना हमें ऐसी
0: पे सही कह रहे बहुत अच्छी बात लिख रहे कभी
1: के कितनी बढ़िया बात लिख रहे के गठज्जा को मतलब के जब आदमी ज्यादा गठज्जा बांध ले चाहे कोनो काम की हो
0: सही कह रहे
1: तो वो कहो के गठज्जा तो बहुत बढ़ जा
0: अच्छा उसको वजन धरे फिरने
1: और भैया का अनाई का भी लिख रहे कभी सतन सभ्यत सुख करण जासो भूल परो संतन सभ्यन सुख के करण जासे भूल परो
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिख रहे
1: हाँ
0: कि संतन सम्यक संतन सम्यक सुख के कारण संतन सम्यक सुख के कारण जासो भूल परी ओ कहत कबीर राम ने जासुख कहत कबीर राम ने जामुख तामुख धूल भरी
1: धूल भरी ताम जोन भी मुखते
0: हाँ
1: जोन कैसे मुखते और कैसे लेकिन उको भैया पल और कर्तव्य और समय की

0: कीमत है। बिल्कुल, जैसो तुम करो और एक दिन ऐसा होने के जो मुख धूल में मिल जाने।
1: सही कह रहे,
0: मिल जाने के नहीं मिल जाने। अब देखो, अब कितने अब कछु तुम सो कछु नहा लो।
1: सही कह रहे,
0: पैसे ही नहा लो या कछु लगा लो।
1: सही कह रहे,
0: लेकिन अपने ऊपर चादर तो चढ़ गई है, जो अपनी काया है या
1: सही कह
0: अपन मल मल के कछु धो लो या कछु काम कर लो।
1: बिल्कुल,
0: जोन अपनी जो चादर है, जोन अपनी जो खाल है, जा तो पुरानी।
1: हाँ, कबीरदास जी बहुत अच्छी लिख रहा है बात को कि चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाहे चादर बीनी, अजब जुलाहे चादर बीनी, सूत कर्म की तानी।
0: देखो भाई, एक एक शब्द की का कह रहे कि चादर हो गई बहुत पुरानी। अरे सोच लो, मतलब जब चादर है जोन जब बहुत पुरानी हो गई, सोच लो और समझ लो।
1: सही कह रहे,
0: कितने कह रहा हूँ मन घमंड में।
1: हाँ हाँ,
0: कविता में उनने कितनी अच्छी हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ ओ भगवान।
1: सही है,
0: ये जो मन है, जो भाव अपनी भावनाएं हैं, जा इके दिमाग और अंदर तो सोचो।
1: सही कह रहा,
0: जा अंदर तो सोचो कि अजब जुलाहे चादर भी नहीं।
1: हाँ,
0: अरे खो गई तुमने आओ में ताओ में, और जैसा कछु बनो तो तुमने उस चादर का अपने हासिल कर ले, कर ले के नहीं। लेकिन सूत कर्म की तानी, जैसे उनने तकली जब सूत काटा थे तो काट काट में बिलाक हो जाए।
1: हाँ,
0: एक एक सूत सूत कर करके, जैसे अपन ने कहा बूंद बूंद से
1: धड़ा धड़ा। सही कह रहा, ऐसे और आगे लिख रहे, सुरति नृत्य, सुरति नृत्य को भरना दीना, तब सबके मनमाही।
0: देखो, अरे जब सुरत है अपनी, जब जिज्ञासा है,
1: हाँ,
0: मन है।
1: सही कह रहे,
0: अरे इमें तो भरो कछु।
1: सही कह रहे,
0: ऐसी भरो के जो सबके मन को भावे।
1: हाँ,
0: जो सबके मनमानी, ऐसो तो नहीं है के तब सबके मनमानी। अरे ऐसो काम करें कि सबके मन में वो मनमानी, ऐसो तो ना करो कि तुम स्वयं अपनी इच्छा का और स्वयं अपनो भंडार कर रहे, जो कछु कर रहे, जो हमन्या कर रहे।
1: हाँ,
0: और जो तुम, अरे जो सबे अच्छो लगे वो काम खा।
1: सही, अच्छे करो,
0: दे रहे उपदेश, दे रहे कि वो काम खा अपन करने हैं।
1: और का लिख रहे आगे कि मेले दाग पड़े पापन के।
0: भैया जे बात है, मेले दाग पड़े पापन के, विसरन में लिपटानो।
1: हाँ, विसरन में लिपटानो।
0: अरे ये जो जो कर्तव्य हो गए, जो कल है, तो दाग लगाई गए।
1: बिल्कुल,
0: और तुम जो काम करिया है तो उनमें तो तुम लिपटे ही हो। जाना जानो कि हमने बढ़िया काम करके या खा के तुमने वो मुंह पोंछ लाओ तो हम हमारे भीतर का छूने नहीं। लेकिन जो कर्तव्य जो कर्म में तुमने कल लाओ तो उनमें तो तुम लिपटे ही गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आगे का लिख रहे कि ज्ञान का साबन लाए ना धोया, ज्ञान को साबन लाए ना धोया, संत संगति के पानी। हाँ, और भाई भाई खराब अब गंसारी, भाई खराब
0: अब गई सारी। देखो भाई खराब अब गई सारी, और लाभ मोह में सानी। अरे बीच क्या कह रहे, क्या बातों अगर जो तुमने सोच ली तो वो जो समय कर गया वो तो खराब हो ही गई।
1: हाँ,
0: भाई खराब।
1: हाँ,
0: तो अब जो काम कर लो तुमने उसमें तो तुम सनई गए।
1: हाँ, लोभ मोह में सानी,
0: जो जो लोभ मोह में तुम सन गए, जो जो चीज तुम्हारे दिमाग में, उसमें तो तुम सने गए। अब कछु नहीं हो।
1: और ऐसे ही उड़त उमर गमाई।
0: भैया जैसो तुम करो।
1: हाँ,
0: जैसो जैसो तो उम्र तो कड़ाई रही।
1: बिल्कुल,
0: और तुम्हारे ऊपर वो कहता बिचड़ रहा।
1: बिल्कुल, ऐसा ही औरत उम्र गमाई, भली बुरी नहीं जानी, और शंका मनी जानी जिए अपने, शंका मन जानी जीने अपने, ये वस्तु बिरानी। जीने जा जान लई के जा वस्तु बहुत बिरानी है, जा अपनी नहीं है, अपन तो जेतना है सो

0: ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਇਥੋਂ ਕੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਯੂੰ ਹੀ ਰਾਖ ਜਤਨ ਸੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਯੂੰ ਹੀ ਰਾਖ ਜਤਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਨੀ ਅਗਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨਿਕਰ ਗਓ ਫਿਰ ਹਾਥ ਆਵੇ ਵਾਓ ਨਹੀਂ ਆ
1: ਦੇਖੋ ਭਈਆ ਕਾਹੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਵਤਨ ਮੇ
0: ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਔਰ ਅੱਜ ਕੇ ਈ ਗਿਆਨ ਮੇ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹਾ
0: ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ
1: ਕਿ ਨਾ ਤੋ ਭਈਆ ਆਪਣ ਖਾਂ ਜਾ ਉਮਰ ਹੈ ਜੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਔਰ ਨਾ ਜੋ ਮੋਹ ਹੈ ਜੋ ਲੋਭ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਨੇ ਆ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਹੈ ਔਰ ਐਸੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਮੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਈ ਪੇ ਆਪਣ ਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਮ ਇਸੇ ਯਾ ਲਾ ਜਾਵੇ ਯਾ ਆਪਣੇ ਉਪਰੇ ਨਾਮ ਕਮ ਜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਫਲਾਨੋ ਭਈਆ ਐਸੋ ਆ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੋ ਦੇਖੋ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਭਈਆ ਅਭੀ ਕੇ ਸੰਗੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਜੋ ਬਤਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇ ਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੇ ਆਪਣੋ ਜਾਵੇ ਕੋ ਅਬ ਸਮੇ ਸੋ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਭਈਆ
0: ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੇ ਜੋ ਸੁਣਵੇ ਵਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਨ ਸੇ ਕਹਿਵੋ ਚਾਹੇ ਕਿ ਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇ ਅਗਰ ਜਿਤੇ ਬਾਤ ਕੰਬਲ ਭਈ ਹੋਵੇ ਯਾ ਫਿਰ ਸਦਨ ਕਸਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਕਛੂ ਔਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪ ਉਹ ਬਾਤ ਕੋ ਜਾਣਤ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਕਸਾਈ ਕੀ ਜਾ ਕਥਾ ਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਹਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣ ਖੋ ਉਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਨਈਆ ਸਦਨ ਕਸਾਈ ਕੀ ਕਥਾ ਕੋ ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਣਵੇ ਬਾਏ ਸਾਥੀ ਹੈ ਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣ ਖੋ ਬਤਾਵੇ
1: ਭਈਆ ਈ ਮੈਂ ਜਾ ਬਾਤ ਨਈਆ ਦੇਖੋ ਗੇ ਗੇਰੀ ਗੇ ਉਠਲੀ ਹੈ
0: ਹਾਂ
1: ਆਪਣੋ ਕਾਮ ਹੈ ਭਈਆ ਲੋ ਜਿਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਆਪਣ ਜਾਣਤ ਹੈ
0: ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਉਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਆਪਣ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਔਰ ਜੋ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੋ ਇਹੀ ਕੇ ਲਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਭਈਆ ਆਪਣ ਖਾਂ ਬਤਾਏ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਔਰ ਉਨ ਭਈਆ ਕੋ ਆਪਣ ਬਾਤਨ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ
0: ਹਾਂ ਹਾਂ
1: ਔਰ ਉਨਕੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾਏ ਹੈ जो उनके कहानियां हैं या जो किस्सा है वो अपन का भेज
0: बिल्कुल
1: तो भैया अपनो पतो और फोन नंबर बता दो
0: जी हाँ काशीराम जी भैया अपनो देखो पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा और अपनो फोन नंबर है 94-25-14-17-26 अब एक संगे अपने दोस्त माता दीन को
1: और भैया काशीराम को दो आज्ञा
0: नमस्कार रेडियो बुंदेलखंड
2: एपिसोड नंबर 11 सफाई कर्मचारी। इस एपिसोड का उद्देश्य है लोग सफाई कर्मचारियों का काम उनकी जिम्मेदारियां मुश्किलों और परेशानियों को ठीक से समझें। सफाई कर्मचारियों को फायदेमंद योजनाओं की जानकारी दी जाए साथ ही ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे उन्हें इज्जत और मान सम्मान मिले। इस कार्यक्रम के मुख्य संदेश हैं सफाई कर्मचारियों का काम और उनकी समस्याएं, सरकारी योजना और कानूनी सुरक्षा, पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग, पहले और बाद में पूछे गए कुछ सवाल। सवाल नंबर 1, क्या सफाई कर्मचारियों को काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क दस्ताने पहनने चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर 2, क्या गांव के सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? क्या ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों की सेहत की जांच समय समय पर करानी चाहिए, हाँ या नहीं? श्रोताओं, ये 3 सवाल हैं, इसके जवाब आपको इसी कार्यक्रम में मिलेंगे, इसीलिए कार्यक्रम ध्यान से सुनिएगा। विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के लिए इन योजनाओं पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY योजना के तहत प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा मिलता है। ये इलाज बड़े अस्पतालों में भी कराया जा सकता है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना सफाई कर्मचारियों और अन्य लोगों के जीवन बीमा का फायदा देती है। अगर किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 3 योजना है। इस योजना में ऐसे मामलों में मदद की जाती है जब किसी सफाई कर्मचारी की गंभीर दुर्घटना हो जाती है। अगर दुर्घटना में मौत या पूरी तरह से अपंगता हो जाती है तो 2 लाख की सहायता राशि मिलती है। अगर कुछ हद तक अपंगता होती है तो 1 लाख तक की मदद दी जाती है। स्वच्छता योद्धा, स्वच्छता के गुमनाम नायक,

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। मैं हूं आपकी आरजे वर्षा और मेरे साथ है मेरे आरजे आरजे
1: माता दीन।
0: कभी भी सड़क पर कचरा नहीं फेंकते हैं, दूसरों को भी साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहते हैं।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे माता दीन। आज हम एक खास एपिसोड लेकर आए हैं। इसमें हम उन लोगों की बातें करेंगे जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी तारीफ कम होती है।
0: बिल्कुल सही कहा माता दीन, वे ना तो सूट पहनते हैं और ना ही बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, लेकिन उनके बिना साफ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। ना साफ सड़कें, ना ठीक से चलने वाले शौचालय और ना ही रोज की सफाई होगी।
1: आज का एपिसोड उन सफाई कर्मचारियों के बारे में है जो स्वच्छता के असली हीरो हैं। वे गलियां साफ करते हैं, सेप्टिक टैंक खाली करते हैं, नालियां साफ करते हैं और कई बार बहुत मुश्किल हालात में भी लगातार काम करते रहते हैं ताकि साफ, सुरक्षित और रहने लायक माहौल बना रहे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि नाली, स्कूल परिसर या सार्वजनिक शौचालय किसने साफ किया? ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते।
1: हाँ, उनका काम दिखता तो है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पर आज ऐसा नहीं होगा, आज हम उनके काम के साथ

0: साथ उनकी जिंदगी और परेशानियों की बात भी करेंगे। ये भी बताएंगे कि वे भी सुरक्षा, मदद और सम्मान के हकदार हैं।
1: वे ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, जैसे गंदे टैंक साफ करना, जाम नालियों को खोलना, भारी मशीनें चलाना और कचरा साफ करना। इन कार्यों की वजह से उन्हें हैजा, टाइफाइड, पीलिया और सांस की बीमारियों का खतरा बना रहता है।
0: एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 50 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी काम करते हैं। उनमें से करीब 20 लाख लोग ऐसे काम करते हैं जो बहुत जोखिम भरे होते हैं। सोचिए, अगर ये बिना मास्क, दस्ताने या सुरक्षा उपकरणों के काम करते हैं तो उन्हें कितनी परेशानी होती होगी।
1: ये काम बहुत खतरनाक होता है। दुख की बात ये है कि ये लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सफाई कर्मचारी कई बार कम वेतन में नौकरी की गारंटी के बिना मुश्किल हालात में काम करते हैं।
0: लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार ने खासकर स्वच्छ भारत मिशन के जरिए सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई अच्छे कदम उठाए हैं। कुछ खास योजनाएं हैं जिसका उद्देश्य उन्हें सुरक्षित और सम्मानित बनाना है।
1: दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय यत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र अभियान यानी नमस्ते योजना के बारे में बात करेंगे। ये योजना दो मंत्रालयों, सामाजिक न्याय मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की साझी पहल है।
0: इसका मकसद सूखी शौचालयों, खुली नालियों या सेप्टिक टैंकों से मानव मल को बिना मास्क या दस्ताने के हाथ से साफ करने की खतरनाक प्रथा को समाप्त करना है।
1: नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को वैक्यूम मशीन चलाना सिखाया जाता है और उन्हें मास्क, दस्ताने, जूते और सुरक्षा साधन जैसे जरूरी सामान इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें इलाज के लिए बीमा और कानूनी सुरक्षा भी मिलती है।
0: क्या आप जानते हैं कि अगर किसी को बिना सुरक्षा के शिविर साफ करने को मजबूर किया जाए तो ये भारतीय कानून के हिसाब से गलत माना जाता है?
1: हाँ, मुझे पता है। सफाई कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर में भेजना गलत है। ऐसा करना कानून के खिलाफ है।
0: सही कहा, लेकिन कई जगहों पर नियम का पालन नहीं होता है। सफाई कर्मचारी को बस एक बाल्टी देकर गंदे माहौल में उतरने को मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें हैजा, पीलिया और सांस की बीमारी जैसी समस्याओं का खतरा रहता है। साथ ही चोट लगने और जहरीली चीजों से नुकसान का डर भी रहता है।
1: मुझे लगता है कि उचित कदम उठाने का समय आ गया है। कानून का पालन करें और साफ सफाई का काम करने वालों को सम्मान दें।
0: और यही पंचायतों की भूमिका शुरू होती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पंचायत की जिम्मेदारी है कि सफाई कर्मचारी सुरक्षित रहें, उन्हें अच्छा वेतन मिले, उन्हें काम की ट्रेनिंग दी जाए और उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए।
1: पंचायत सफाई कर्मचारियों की सूचना एक जगह जमा कर सकती है, उन्हें फोटो वाले पहचान पत्र दे सकती है और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ सकती है, जैसे इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना।
0: चलिए अब इन योजनाओं की और जानकारी देते हैं।
1: बिल्कुल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJAY एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत हर योग्य परिवार को अस्पताल में इलाज के लिए साल भर में 5 लाख तक की मदद मिल सकती है। इसके लिए सफाई कर्मचारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राम पंचायत ऑफिस जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाना होता है। पंचायत उन्हें ई हॉस्पिटल ID बनवाने और क्लेम की प्रक्रिया समझाने में मदद भी करती है। इस तरह अगर परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ती है।
0: और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण यानी PMAYG की ये योजनाएं लोगों को पक्के घर बनवाने में मदद करती हैं। इसके तहत उन्हें जरूरी सुविधाएं वाले घर बनाने के लिए पैसे मिल सकते हैं। प्रक्रिया आसान है, वे अपने ग्राम पंचायत के ऑफिस जाएं, वहां उनके आधार कार्ड और जमीन के कागज देखे जाएंगे, फिर पंचायत उनका आवेदन करेगी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो उन्हें घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं।
1: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY एक ऐसी जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मौत होने पर 2 लाख का कवर देती है। ये योजना 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए कम सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है। सालाना प्रीमियम 436 रुपए प्रति व्यक्ति है।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है जो 18 से 70 साल की उम्र के लोगों के लिए अचानक मौत या अपंगता के लिए 2 लाख रुपए तक का कवर देती है। ये योजना प्रति व्यक्ति 20 रुपए प्रति वर्ष के सस्ते सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है।
1: देखिए, सफाई कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं हैं जिसका वे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कई बार लोगों को आवेदन करने का तरीका पता नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि इस बारे में लोगों को बताया जाए। अगर आप सफाई के काम में लगे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं तो उन्हें जरूर अपनी पंचायत से बात करने और इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए कहें, इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है।
0: हाँ, ये उनके लिए बहुत काम की बात होगी। पंचायत को समय समय पर ऐसे कैंप भी लगाने चाहिए जहाँ सफाई कर्मचारियों को लाभ देने वाली योजनाओं के बारे में बताया जाए।
1: ये बहुत काम की बात होगी। ये भी ना भूलें कि हर कर्मचारी को काम की जगह पर PPI किट, साफ शौचालय, पीने का पानी और फर्स्ट एड की सुरक्षा मिलनी चाहिए।
0: एक और जरूरी बात है, सफाई कर्मचारियों के लिए सेहत से जुड़े कैंप का आयोजन होना चाहिए। वे अक्सर खतरनाक चीजें जैसे संपर्क में आते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाएं समय समय पर उनकी डॉक्टर से जांच कराएं, समय समय पर टीके लगवाएं और लगातार मदद देते रहें।
1: प्रशिक्षण भी उतना ही जरूरी है। सफाई कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा औजारों के इस्तेमाल, मशीन चलाने और डिजिटल साक्षरता का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने फायदे ऑनलाइन देख सकें।
0: ये सब तो समझ में आती है, लेकिन एक और बात है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ।
1: बताओ क्या बात है?
0: मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम सफाई कर्मचारियों के नाम जानते हैं, उनके परिवार के बारे में कुछ जानते हैं, और क्या हम उनके लोगों को धन्यवाद कहते हैं जो हमारी गलियां, नालियां, शौचालय और सड़कें रोज साफ करते हैं।
1: शायद ही कभी, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए। हमें ये तय करना चाहिए कि सफाई दिवस पर ग्राम सभा की बैठकों में, स्कूल के कार्यक्रमों में सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया जाए, उनके काम के लिए उन्हें इज्जत, मान सम्मान और पहचान मिले।
0: हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सोच है। महीने का सबसे अच्छा सफाई कर्मचारी जैसा बेज भी किसी को गर्व महसूस करा सकता है।
1: ये कोई दान नहीं बल्कि इज्जत है। ये तो बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। हमें अपने सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान भरा काम करने का माहौल बनाना होगा। जैसे बाकी काम होते हैं, वैसे ही सफाई भी एक काम है।
0: तो श्रोताओं, आज के इस एपिसोड में हम हर सफाई कर्मचारी, चाहे वो अब काम कर रहे हों या पहले करते थे, को सलाम करते हैं। उन्होंने चुपचाप मेहनत की है, गलियां साफ की हैं, नालियां खोली हैं, हमारी जिंदगी को साफ और सेहतमंद बनाया है। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि अगर आपको कोई सफाई कर्मचारी दिखे तो उन्हें धन्यवाद जरूर दें, उन्हें पानी, चाय या कुछ खाना दें, और सबसे जरूरी बात है उन्हें सम्मान दें, उनका काम इज्जत के काबिल है।
1: सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों, याद रखिए कि सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले PPI किट पहनना भले ही थोड़ा असहज लगे, लेकिन ये आपकी जान बचाता है। दस्ताने, जूते और मास्क आपको खतरनाक बीमारियां और जहरीले गैसों से बचाते हैं। हर बार जब आप इन

0: सुरक्षात्मक चीजों को पहचानना भूल जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी नहीं अपने परिवार की सेहत को भी खतरे में डालते हैं। आपके कपड़ों पर लगे कीटाणु आपके बच्चों और जीवन साथी को भी बीमार कर सकते हैं। और हाँ, एक तय समय के बाद पीपीआई किट बदलना बहुत जरूरी होता है, इसे साफ रखना भी उतना ही आवश्यक है।
1: प्यारे श्रोताओं, सुरक्षित रहिए, साफ रहिए, ये कभी मत भूलिए कि जो हमारे लिए सफाई करते हैं वो भी पूरे गर्व के साथ जीने के हकदार हैं।
2: आइए स्वच्छ भारत का निर्माण सिर्फ साफ सड़कों से नहीं बल्कि साफ दिलों से भी करें।
0: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम एपिसोड 11 यही समाप्त होता है। श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा हमारे नंबर पे कॉल करके। हमारा नंबर है 9219207749। श्रोताओं, जो सवाल हमने कार्यक्रम शुरू होने से पहले पूछे थे आपसे, एक बार फिर से उन कार्यक्रमों को यानी उन सवालों को हम दोहरा देते हैं। तो सवाल नंबर एक है, क्या सफाई कर्मचारियों को काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क दस्ताने पहनने चाहिए, हाँ या नहीं। सवाल नंबर दूसरा, क्या गांव के सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं। सवाल नंबर तीसरा और आखिरी, क्या ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों की सेहत की जांच समय समय पर करानी चाहिए, हाँ या नहीं। इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे अगर आपने यह कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जल्दी से फोन उठाइए और हमें व्हाट्सएप करिए इन तीनों सवालों के जवाब हाँ या नहीं में। आज के इस कार्यक्रम से जाने का होता है हमारा समय और हम चलते हैं, फिर जल्दी ही आप सभी से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बीमारियों से दूर रहिए।
2: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करेंगे और नमस्कार सब साथियों को
1: हमारी भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो दे करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते ही मतलब का है तुम बात कर रहा था अपने साथ
1: नहीं नहीं हमारी भी नमस्कार पहुंच जावे सभी अच्छा। श्रोता साथियों को काय से हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है
0: वो हाँ वो तुम
1: हमारे नहीं हमारे युवा साथी जो सोचे थे हाँ। के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आतेंगे
0: हाँ, और हमें मतलब जो जानकारी देंगे नहीं हाँ। नहीं जो ही मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हम ही अपने साथी इनके बीच में लेके आऊ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गई ये बात को तो मैं बुरा लगा हुज्जे से तुम बीच में हमारी बात काटन लगे
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होती हैगी जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछे थे कि भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव कर रहे को काय से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम हो और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथियों ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी। अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम हम तो हुए ही कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो
0: अरे बस बस, बस बस बस बस मनीष भैया बस बस बहुत ज्ञान देते हैं आप इतनो ज्ञान जब बोला थेंगे तो ऐसा लगत के कितु बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेत हुए। अब तना बता तो दो कौन सो कार्यक्रम लेके आए हैं
1: जो कार्यक्रम को नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम और जहाँ मैं अपन सुनते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा
0: ये और... यानी के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ
1: हाँ और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करवे जा रहे हैं
0: हाँ हा।
1: तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते हैं व्यक्तित्व विकास जो रहते है यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है आप जैसे इंटरव्यू देवे जा रहा है तो आप हिचकिचाते होगे कैसे बहुत ज्यादा समय लगा थे जी चीजन को सीखे में यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देना है वो तो नौकरियन में जी चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो और तभी हम आगे बढ़ सके तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: लेकिन जो तो बताओ अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता के बारे में रहे
1: नहीं हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं
0: मतलब हमारी बहन को एक फोन आ रहा है बता दो
1: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी बे का सलाह दे रही है इसको सुना थे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैं जी एक चीज हम एक बारे में बतावा चाहते हैं
0: फोन तो उठा लो पहला वो
1: नहीं हम बिल्कुल उठाए ले रहा है फोन हम अपने साथियों को बतावा चाहते हैं के व्यवसाय कर वो और व्यवसाय के बारे में समझ वो ये बहुत बड़ी चीज रहती है जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैंगे तो वास्तव में जो सीख मिलत है उनके जो अनुभव रहेंगे उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहेगी।
0: अब फोन कटगा आप काय में से उठा रहे
1: चलो हमारे संगे टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही है चलो उनसे बतकाव अपन कर लेते हैं तो उनके अनुभव को साझा कराते हैं
0: तो बात तो हम ही करें आप फोन ना करें
1: चलो आप ही कर लो भैया रूपा जी का फोन है वो आप ही बात
0: हाँ ठीक है। हेलो नमस्ते
2: नमस्ते रूपा रानीपुरा से जिला टीकमगढ़ से अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है टीचर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है इसमें कपड़ा भी आए हुए तो कपड़ा की सिलाई चल रही है सिलाई सीखेंगे अब
0: अच्छा यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या
2: हाँ जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा वहाँ से फिर हम गांव में आ गए रानीपुरा गांव में वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे फिर तो पैसे भी मिलने लगे
0: जी
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते
0: हैं जी तो रूपा जी हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा कैसे आपने उसमें अप्लाई किया कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली
2: हाँ वैसे गांव के थे आदमी जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से
0: जी
2: उनसे हमने संपर्क किया तो फिर उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर एक महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गाँव में आ गए। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा है।
0: जी तो आपने जब अप्लाई किया था वहाँ पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
2: नहीं, फ्री में सीखा।
0: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं लगे थे?
2: नहीं।
0: अच्छा, तो रूपा जी आप इससे पहले सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
2: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी नहीं लगती नहीं है, बस बैठी है खाली घर में।
0: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
2: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें दो पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर ना जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे, बस दो पैसे मिले, हमें दो पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर ना कहीं जाना पड़े।
0: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आप काम कर रही हैं इसमें आपको कितना क्या मुनाफा जिसको कहते हैं कैसे हो जाता है?
2: वैसे हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए, दिन में एक दो बिलो सिले तो बन जाते 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
0: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ जो खर्चे होते हैं थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे?
2: हाँ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा, आगे बढ़ाएंगे जी।
2: हाँ,
0: बिल्कुल,
2: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
2: हाँ, ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी, तो ऐसी पुराने चीज थी ना, उन्होंने सिलाए जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए काट के दिए थे उन्होंने।
0: जी, कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
2: इसमें वही लोग हमें देते हैं कपड़ा, तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए?
2: हाँ,
0: कपड़े?
2: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो। और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या लड़कियां?
2: 10-12 महिलाएं हैं, साथ में मिलके सारी करती हैं।
0: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
2: हाँ, समूह वाले भी हैं कुछ, बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी, बहुत बढ़िया आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें
2: आगे? ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करे, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी जी, बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई है बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम आपने शुरू किया तो क्या क्या परेशानी आपको आई, क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
2: परेशानी तो आती है।

0: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता। जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके के हमने सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं,
0: जी
1: उनसे उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
0: जी
1: कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में, तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते।
1: नहीं ले सकते ना, फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब।
0: जी
1: तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई। हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने कि
0: जी
1: ये चीज क्या है, तो
0: जी
1: हमें जानकारी हुई।
0: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है, तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं, आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर
1: नहीं
0: इससे
1: एक
0: ज्यादा
1: महीने
0: समय
1: में
0: लगा?
1: नहीं किया भी, नहीं, एक महीने में नहीं हमने किया।
0: जी
1: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। अब कितने फिलहाल हमने 1 महीने, 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए
0: अच्छा, 3 महीने
1: अभी
0: आपके
1: सीख
0: गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं।
1: रहे। हाँ वैसे सलवार है, कुर्ती
0: जी
1: है, ब्लाउज है,
0: ये
1: बस
0: चीजें
1: यही
0: आप
1: दो
0: बना
1: तीन,
0: लेती हैं।
1: हाँ यही 2-3 चीजें बना लेते हैं।
0: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
1: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प की।
0: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा कि लोग आएं और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
1: नहीं अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है, तो
0: अच्छा
1: अभी तो कोई नहीं आता। अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर हो गए टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं ताकि हमें आगे बढ़े।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी। इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हो, उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
1: हाँ पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था, तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिलते रहते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन सती जी एक बात और बता कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे ना बढ़ पे? अगर घर ही में है ना इंसान तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता। ये सबको भी आप बता दो, आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे हो गए
0: जी
1: तो, लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है? इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई, और सब अच्छे
0: जी
1: जो है एक घर में सब सारे मिलके चले। एक
0: जी बिल्कुल, आपके कहने का
1: बहन
0: मतलब
1: होने
0: है कि महिलाएं, बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहते, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
1: नहीं बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
0: जी, तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
1: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें बढ़ाओ ताकि हम 2 पैसे कमा सके। हम कहीं कहाँ जाए, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाए गाँव छोड़ के,
0: जी जी
1: बताओ।
0: बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गांव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती हैं, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गांव में रहकर ही कर सकती हैं, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती हैं।
1: लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
0: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारे साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, और वो कुछ करना चाहती हैं, तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाए, ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
1: इसलिए सोच रहे हैं, लेकिन गलत सोच है बरसा, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ना जाए आगे, यही यही रह जाए। सोच गलत है, आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
0: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती है, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
1: उनके लिए बस यही, कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे। लड़का लड़की कहते हैं, लड़का लड़की एक समान
0: जी
1: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
0: जी बिल्कुल रूपा जी,
1: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई, तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे।
0: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दे, ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छी बात, धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: काय वर्षा, तुम तो इतनी नौनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दिया। आपको शायद हमें देखा पहले से बिल्कुल पता हो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताएं।
0: हाँ,
2: हम सोच ही रहते हम में आज कौन सा व्यवसाय दें, कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई रही कि हमने जो हम अनुभव जो रहे हैं उनके, कैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो उसके लाने ट्रेनिंग की जरूरत पड़ा थे, उसके नाना मार्केटिंग की जरूरत पड़ा थे। ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई है, और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनो परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं। वाह, धन्यवाद।
0: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी, जा हैगी कि अपन और सीख तो ले थेंगे, मतलब जैसे कहते सुनी कि अरे वो ते जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना, सीख भी बहुत है ना, नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहते है, सो चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकत, कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते, जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाएंगे। तो काय की रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो आरसीटी सेंटर चला थे वो, उनके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी, लेकिन अगर बात करें कि उनको कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घर जब वापस गई और भी सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो कैबी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उनको जरूर सीखो, क्योंकि आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है, और वो समय आपको बहुत कीमती हतो, महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते हैंगे, वो सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत, एक तो हो जाते है वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छा लगा है वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काय अटकती, हम तो कहते आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जी मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हो और बहुत अच्छे तरीका से आप बनावो जानती हैं, तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की

0: ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छे तरीके से बना वो आते तो। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
1: अरे ज्ञान की देवी, अब तो
0: हाँ
1: नक रुक जाओ और हमारे साथ ही अनुभव तनक सांस लेन दो और जब लोक गीत सुनन दो नखो, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी। तो हमारे साथ ही कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हेंगे
0: हाँ,
1: और
0: मतलब
1: ज्ञान
0: तुम
1: लेके।
0: तो मैं बोलन दो सो कछु नहीं है,
1: नहीं
0: तुम
1: नहीं नहीं
0: बोला
1: अपन
0: तराओ।
1: एक बढ़िया अपन भी थोड़ो विराम ले लेते हैंगे और अपन सुनवात हैं अपने श्रोता साथियों को जो 900 गजल खो, अपन गजल खो सुनेंगे और गजल के बाद साथियों फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम, हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे, और अब हमें लगा थे वो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम्हें दे सकते हो, कहे गया हम बोला सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे,
0: नहीं
1: साथ ही
0: दो।
1: अनखों बस पूछ वो चाह रहेंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहेंगे, तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहेंगे? कैसे जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसो मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकत हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकत हैंगे। तो अपन जो चीजें आपको बताते हैंगे, जो बातें आपको बताते हैंगे, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैंगे जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है गो, जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैंगे। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा है गो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है गो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैंगे।
0: बिल्कुल एक प्रकार है, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो लाना हमारा नंबर जो है वो।
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में काहे नहीं बताओ, और
1: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास यदि
0: जाना
1: है,
0: थे
1: नहीं, जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहां पे है इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहां भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाने हैं वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड का लोगो उपलब्ध पाओगे, बाखो डाउनलोड करो और चाँद जिते बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चाँद उन छिड़िया में बैठ के सुन सकते हैंगे और अपनी ज्ञान की बात अनखों सुन सकते हैंगे।
0: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने आप डाउनलोड जरूर कर बे ऐप, काहे कि अपने श्रोता साथियों की हर बार जय शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर ले रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जिते चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सकते हैं सुबेरे 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा हो, काहे कि अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा, तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।

0: सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: आवो बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
0: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
1: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
0: सरपंच

0: जो भी राज से मिला आरक्षण वो हमको अपनाना है।
1: जो भी राज से मिला आरक्षण वो हमको

0: बन सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक, घर से पंचायत

0: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
1: पंचायत।
0: गांव में किते किते और का काम हुजे जो तय को करे?
2: ग्राम सभा।
0: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
1: ग्राम सभा की।
0: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
3: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: चंदनी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
5: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हूँ तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
4: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक

0: अरे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
1: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, ये जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पे जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पे तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है कि जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए और क्रियान्वयन, मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं, इसमें हम जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पे कैसे काम किया जाए, कि देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है ये सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किस आधार पे कहाँ पहुंचना है ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गाँव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को, जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगर आप देश के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गाँव के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे एक कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजना ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गाँव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है। और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई है जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पे किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के, तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समर्थ स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात।
0: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे

0: साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत की।
1: गांव में कितने कितने और का काम हुजे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। आप तो दोस्तों समझ गए होंगे, आप एहसास हुआ होगा। अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा। क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो, हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है? ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी हाल इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी। अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए नाली का काम ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभाएं होती ग्राम सभा में प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है साहब, हमारे घर में शौचालय बनवाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्या देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में। आपके हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है 9425147726। तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

वो पढ़ रहे हैं जो फिल्में हैं, जो अखबार में नहीं है।

अजमेर जाते हैं, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं।

0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।
2: झंडा तिरंगा

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

लेकिन आप हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी, हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी हो। कर लो विवेक, कर लो विवेक, हाँ कर लो विवेक। और लीजिए मानो मानो हानि

0: आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून।
1: अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए।

डार पे तीन डरे झूला और चीनो सखी अपने दूल्हा। देखो दोस्तों, अपन सबजन ने जो भजन सुनो है, ई भजन में अपन ने सुनो है भूले राम कुशवाहा जी के गाय भाई भजन को। अब आओ सुनत है फिर से नहीं के गाय भाई भजन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिजनार सतावे के मैया मोए जा बिजनार सतावे। अब आओ आगे सुनते हैं कि जीवन नैया भूला नाथ हमारे। देखो कितना प्यारो भजन अपन अब आगे सुनवे को जा रहे हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो कितना प्यारा जो भजन सुनो है, इसको आनंद लाओ। आप दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं गंगाराम भैया जी के गाये भय सुर में एक कछिया भजन को, कि मथुरा से दूती आई रे सभा के बीच में। आओ सुनते हैं गीत।